0: भेट त धरे रिसाछन बोलेनन खाइ
1: खै यति करलान्दन नगाउने के गथे
2: मुहा बिराली छ क्या
3: हे के भनम खै